0: 92.7 Hard FM का गया और श्री 93.7 Hard FM की डॉन सेम राइट नाउ वी गेट 45 मिनट्स सैटरडे 6 o'clock
1: Hard FM
0: अलग तो दलीरे Brown Man Revival coming through. This next song is brought to you by Virginia Hot Dog. By the Hot Dog, Virginia.